0: आफ्ना बैरागले गाउँछु बैसा छ भनौले
1: कादे सागो चुन चुन जित्ता भड्कुनाले मेरा साई पराया भया।

0: रेडियो आधी खुला 105.4
1: नेटवर्क सीआईएन बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।